0: क्या बात है रचा जी, क्या बात है।
1: तो ये गीत जो है ना विद्यापति ने लिखा था जब पहले बाल विवाह होता था। शिशिर जी इसको अच्छे से समझा सकते हैं। तो बाल विवाह में वो कैसे माँ से अपने कहती है कि बच्चे से तुमने शादी कर दी, और उसको उन्होंने वर्णित किया है।
0: तो बाल विवाह उस समय भी बता रहा होगा।
2: हाँ, बाल
1: जी जी, हाँ, जी।
2: कम उम्र में शादियां होती थी। और जो जो
0: ये कब की कौन से एरा की बात होगी लगभग?
2: ये विद्यापति हमारे 1300-1400 के कवि हैं।
0: 1400 के,
2: हाँ, तो उन्होंने उसी समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके ऊपर में सब लिखा है। और जो क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी हम उम्र होते हुए भी थोड़ा सा उनका जो ये है,
0: लड़कियां उम्र में मैच्योर जल्दी
1: हो जाती हैं। लड़कियां मैच्योर जल्दी हो जाती थी और उनके पति जो हैं वो दिमाग उनका बाल अवस्था में ही था, तो उसको वर्णित किया है।
0: अच्छा।
2: और समाज के इस कुरीति को विद्यापति ने लोगों के सामने लेकर के आए। और यदि इसीलिए केवल एक श्रृंगारिक पद नहीं है बल्कि उस समय जो समाज में की क्या गहरी सामाजिक वास्तविकता थी और एक स्त्री के मन की पीड़ा क्या है, इसको उन्होंने बहुत ही सहज शब्दों में और बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और वैसे भी मैथिली भाषा बहुत ही कर्णप्रिय, बहुत ही मधुर है। तो कुछ बातें हम चाहेंगे शिशिर जी जो है मैथिली में ही कहें।
0: मैं सोच रहा था कि एक्चुअली मैं कल ये सोच रहा था कि किस एक में थोड़ा अपने लिए एक बना लूं कुछ उसको स्क्रिप्ट ट्रांसलेट करके, लेकिन वो बन नहीं पाया। कि मैं भी शुरुआत आज के प्रोग्राम की मैथिली में बोल के ही करूं, ये मेरा प्रयास है, लेकिन वो हो नहीं पाया।
2: एक वहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, अपन जे मधुर वाणी छे वैसा हम सब के अनुग्रहित के लिए बैज का, सच में दिल हृदय जैसे से गदगद भ गए। वास्तविक में बहुत बढ़िया, बहुत बहुत नीक,
1: धन्यवाद।
0: चलिए, आपकी भी फरमाइश पूरी होगी ऋचा जी, आपने हमें जो समय दिया वो इतनी मधुर अपने कंठ से इतनी मधुर जो संगीत का प्रभाव आपने छोड़ा, बहुत ही सराहनीय, बहुत बहुत सा धन्यवाद।
1: जो है ना समय नहीं दिया, अगर प्रैक्टिस करती तो थोड़ा बेहतर
2: जा सकती। आप, मैं आपसे संपर्क करूंगा ऋचा जी।
0: आपको समय देने की कोई जरूरत नहीं है ऋचा जी, आपको बस धन्यवाद ऋचा जी। तो श्रोताओं, जो लोग मैं समझता हूँ, मैं अभी मैसेज देख रहा हूँ, कई लोगों के फर्दर आए हैं कि मैं मिथिलेश जी बोले बहुत बहुत सुंदर ऋचा जी, बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम इज गोइंग। तो अभी एक हमारे श्रोता हैं जो हमारे को मैसेज करा, मैं उनका पढ़ता हूँ कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा मैं जसप्रीत जी को एक फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ। तो एक और हम बात करना चाहते हैं मैथिली के बारे में कि हेलो जसप्रीत, हाँ कैसे हैं आप?
3: बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू सो मच।
0: हाँ चलिए, मैं आपको अभी आप लाइव है रेडियो पे, बताइए आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहती हैं?
3: नहीं, आपका प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है, ऑलवेज लिसन एवरी संडे, और मैं बहुत एंजॉय करती हूं आपका म्यूजिक भी और आपका शैलजा जी की और आपकी हिंदी भी। आई लव शैलजा जी की प्योर हिंदी, और आज मुझे मिथिला का सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आई एम पंजाबी एनीवे, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि ये हो रहा है, इसको आप डेवलप भी कर रहे हैं यहाँ पे, एंड आई वुड लव टू जॉइन हिज ऑनलाइन क्लासेस टू।
0: अच्छा चलिए, तो फिर आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दो स्टूडेंट मिल गए, मैं मिल गया, मुझे स्पीची मिल गई।
3: और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैं तो कल रात को ही सुन रही थी मनोज वाजपेयी और उनका कपिल शर्मा के शो पे आए थे वो।
0: अच्छा,
3: एंड आई लव दिस लैंग्वेज एनीवे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे वो बोलते हैं।
0: अच्छा,
3: मैं तो इनकी मूवीज भी कई बार देखती हूं।
0: हां, आजकल कई मूवी आई हैं जो एक वासीपुर गांव कुछ ऐसा था वो,
3: वासीपुर तो है ही है। हां बिल्कुल, वो तो प्रोग्राम है पूरा।
0: अच्छा, प्रोग्राम है
3: मूवी, वो तो शो है। हां जी, हां मैंने भी देखा है पूरा, अब उनका और आई थिंक थर्ड भी आ गया है सीजन।
0: मैं एक साल में दो तीन फिल्में देखता हूँगा।
3: अच्छा?
0: और
3: माय गॉड, हम तो दिन में दो तीन देख लेते हैं।
0: मैं मेरा थोड़ा सा वो है कि मेरी जो पत्नी है वो साल में शायद एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं शायद, वो शायद 730 फिल्म देखती हूँ तो फिर वो कम बैलेंस बराबर हो जाता है। तो उनको उनको ये बहुत पसंद है तो वो मुझे
3: हाँ। हम तो बड़े लकी हैं कि अब इतनी लैंग्वेजेस, मतलब इंडिया की इतनी लैंग्वेजेस हैं,
0: तो बिल्कुल सही बात आपने कही
3: है कि हम अब सुन सकते हैं यू नो यहाँ पे
0: जी।
3: और लाइक सारा कुछ अवेलेबल है अब तो, यू नो पहले तो सिर्फ प्रोग्राम्स होते थे जहाँ यू हैव टू हैव पेड टीवी
0: जी,
3: अब तो इतने अनपेड भी आ गए हैं और
0: जी
3: यू नो इट्स अ गुड, बहुत अच्छा हो गया
0: जी। और फिर आप सीख सकते हैं, आप सिडनी में रहते हुए भी सिडनी में, हो सकता है अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, बाद में हो सकता है कि आप फिजिकल भी सीख सकते हैं
3: जी। एंड नॉट ओनली दैट, मैं तो ये देखती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज जो हमारे बच्चे नहीं भी सुनना चाहते और लैंग्वेज से भी दूर जा रहे हैं, जब आप हम टीवी देखते हैं तो उनको मजबूरी से देखना पड़ जाता है तो लैंग्वेज कहीं तो आएगी ना उनको भी।
0: सही बात है, सही बात है। और मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि लैंग्वेज, अब जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो पंजाबी बोलते होंगे शायद, तो अब आपके बच्चे अगर मान लो पंजाबी नहीं बोलते तो कितना डिस्कनेक्ट हो गया।
3: देखो मैं बताऊँ, हमारे पेरेंट्स तो ग्रैंड पेरेंट्स पंजाबी बोलते थे, हम खुद वहाँ हिंदी बोलने लग गए थे इंडिया में, तो आई थिंक मेरी हिंदी ठीक ठाक है बोलने में,
0: बहुत अच्छी।
3: तो अच्छा, और फिर हमारे बच्चे भी हिंदी बोलते हैं, लाइक पंजाबी थोड़े वर्ड्स बोल लेते हैं, सुनते हैं, बट हिंदी तो हमने यहाँ पे उनको रखी है, लाइक दे आर इन देयर 40s और अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं बच्चे तो, मगर ग्रैंड चिल्ड्रन अब नहीं बोलते हैं यू नो।
0: अब उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, और डिस्कनेक्ट का जो सबसे बड़ा जो जो सैड पार्ट है वो है कि जो उनकी जो जो ग्रैंड पेरेंट्स की जो वैल्यूज हैं वो पास ऑन नहीं हो पाते हैं, जो उनके जीवन के अनुभव हैं वो नहीं आ पाते हैं आपस में, वो दूसरे को बात करना चाहते हैं लेकिन वो अब भाषा का जो माध्यम है वो नहीं हो पा रहा है, तो कितना दुख होता होगा उनको, ग्रैंड पेरेंट्स को और बच्चों को भी, कि वो बात नहीं कर पा रहे
3: और बाद में वो रिपेंट करेंगे
0: बिल्कुल,
3: तो बाद में के ओ के हम सीख लेते हैं
0: बिल्कुल right. बिल्कुल हाँ। तो भाषा इसलिए भी जरूरी है, इसलिए मैं ये मिथिला भाषा के भी बात कर रहा हूँ कि इससे जो कल्चर और जो वैल्यूज मिलेगी, जो जो लोग अब जैसे शिष्य जी की जो बेटी है, अब अगर उसको नहीं मालूम होगा और मान लो शिष्य जी के जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, मान लो लड़की के ग्रैंड पेरेंट्स या इनके ग्रैंड पेरेंट्स, वो मिथिला में अपने आप को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो उसी में हो सकती है जो जो भाषा आप जानते हो, तो वो रह गया ना सब कुछ
3: जी, जी, जी,
0: और अगर जी, आप उसको एक भाषा सीखते हो उसमें क्या बुराई है,
3: मैं बिल्कुल तो सीखनी चाहिए। देखिए अपने कंट्री की कोई भी भाषा जरूर सीखनी चाहिए, मैं तो बोलती हूँ जितनी ज्यादा हो वो भी सीखनी चाहिए
0: जी,
3: अगर आप बिल्कुल हिंदी पंजाब कल्चर्स भी सीखने चाहिए, महाराष्ट्रियन, ये तो अभी मैं देख रही थी कि कोई है यहाँ कपर क्लब, कुछ सपर क्लब है
0: सपर क्लब, तो अच्छा।
3: हाँ मुझे तो मालूम ही नहीं था, आज ही मैं पता नहीं रील में कैसे आया, तो मैं तो सोच रही कि वो भी देखना चाहिए, बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट, वो आया था गुजराती जैन खाने के ऊपर,
0: अच्छा
3: मेरे पास रील, तो मैंने वहां से देखा तो पता चला महाराष्ट्र भी है, तो आई थिंक हम लोगों को एक्सपोजर होना चाहिए, हमको मालूम लगना चाहिए किसी तरह से, एंड पीपल शुड गो एंड ज्वाइन यू नो, हमारा कल्चर बढ़ना चाहिए, खाली ये नहीं कहता ठीक है मतलब ठीक है इंग्लिश तो आएगी आएगी हमको,
0: इंग्लिश तो
3: कल्चर में तो हम सब होंगे ही होंगे बिकॉज हम यहाँ हैं, मगर हमें अपना जो वैल्यूज हैं, अपने मॉरल्स हैं, अपने ये जरूर अपने बच्चों को किसी तरह से विरासत में देनी चाहिए। अब कैसे है ये आई डोंट नो,
0: नहीं वो आएगा नहीं, ये जो हम प्रयास कर रहे हैं ना दर्पण रेडियो पे, जो हम प्रयास कर रहे हैं ये उसी की श्रृंखला है, कई लोग और जुड़ेंगे ऐसा मैं मानता हूँ, जो अभी सुनने वाले हैं और भी श्रोता हो अगर कोई हमारे साथ संपर्क करना चाहता है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 04215907911 पे। जसप्रीत जी आज आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू
0: आपने मेरे को दिया, थैंक यू सो मच। तो शिष्य जी एक और हम आपका जो रिकॉर्डेड है वो सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को, एंड
2: अवश्य।

टकरे बारी। चल कुकरवा टहल लगो अंगना घरक ममता छो, मनुख शिकार बनल अपनी आबक कहतो हियो हियो।

0: बकरी के बकरी के बकरी घास को।
1: ये श्रोताओं फिल्म ममता का था, ये भी मैथिली भाषा की फिल्म थी।

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं अभी हम बात करते हैं नेगेटिव गेयरिंग और कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर. तो पहले तो नेगेटिव गेयरिंग को मैं बता दूँ ये बला क्या है. जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे तो ये बड़ा पॉपुलर है हमारे भारतीयों में. तो जैसे कि आप सैलरी वेजेज अपना इनकम करते हैं और साथ साथ में आपने एक इन्वेस्टमेंट करा प्रॉपर्टी में और कई वजह से उसमें नुकसान होता है, तो उस नुकसान को अब दूसरी इनकम से विच इज़ सैलरी वेजेज या बिजनेस की इनकम जो होती है उससे आप सेटअप कर देते हो, जिससे कि वो आपको टैक्स से रिफंड मिल जाता है. तो एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि समझो आपको 1.5 लाख की सैलरी है और उसमें आपने टैक्स दिया है समझो $50,000. अब यहाँ पे नेगेटिव गेयरिंग हुई आपकी, वो $30,000 की हुई, तो अब आपकी इनकम 1,20,000 रह गई. तो 1,20,000 पे आपको अब टैक्स समझो पड़ता है $40,000. ठीक है, तो $10,000 आपको ATO वापस करता था. तो ATO सॉर्ट ऑफ फंडिंग करता था आपकी नेगेटिव गेयरिंग को. तो ये नेगेटिव गेयरिंग बड़ा पॉपुलर होता था, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि हमारी सरकार पॉलिसी बदलती रहती है, तो उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्करेज हो गया. तो जो इस्टेब्लिश प्रॉपर्टी होती हैं जिनको सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी भी कहते हैं, अगर आपने वो लिए तो अब उसके ऊपर वो मना कर दिया कि अब आप उसके ऊपर नेगेटिव गेयरिंग नहीं कर सकते. आप केवल जो नई प्रॉपर्टी होती है, नई का मतलब है कि जो बिल्डर आपको बेच रहा है या आपने नई बनाई है, उसको अगर आप और एक्चुअली इसमें भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आपने कोई ग्रीन फील्ड पे, जैसे जो बिल्कुल ज़मीन है उस पर घर बनाया है, तो उस पर आप कर सकते हो. लेकिन अगर आपने घर तोड़ के नया दूसरा घर बनाया तो वो नहीं है. और हाँ, अगर घर तोड़ के आपने दो बनाए हैं तो उसमें हो सकता है नेगेटिव गेयरिंग का, वरना नहीं हो सकता है. तो जस्ट थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि ऐसा नहीं कि नए घर आपने कहा आपने घर तोड़ा दूसरा बना लिया तो उससे बना लिया, तो वैसे नहीं हो सकता है. अच्छा, अब आप कहेंगे कि साहब नेगेटिव गेयरिंग नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे. तो उन्होंने क्या करा है कि अब आप अपने नेगेटिव गेयरिंग को, तो एक तारीख आप लिख लीजिए 12 मई 2026, जो बजट की शाम थी 7:30 बजे का समय है. उसके बाद में अगर आपने कुछ ऐसे लिया है और तो आपको इस साल तक, तो ये जो साल है नया हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जुलाई से जून होता है, तो 30 जून 2027 तक तो आप कर सकते हैं, उसके बाद में वो आप नहीं कर सकते उसका नेगेटिव गेयरिंग. तो क्या होगा उसका, फिर जो पैसा जो आपका लॉस हो रहा है तो उसको क्वारंटाइन हो जाएगा आपका. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कोई और रेंटल इनकम आ रही है भविष्य में, उसके साथ में आप सेटअप कर सकते हो, या इस साल में भी, मतलब जो भी साल है उस साल में अगर आपकी दूसरी प्रॉपर्टी से नेगेटिव गेयरिंग होती है उससे सेटअप आप कर सकते हो. ठीक है, या अगर वो उससे नहीं हो पा रहा है तो जब आप कल को आप प्रॉपर्टी बेचते हो, 1 मिलियन का 2 मिलियन हो गया, तो उस समय इस लॉस को आप यूज़ कर सकते हो. तो ये नर्सल में बोला है, आप ऐसे गूगल भी कर सकते हो, AI सर्च भी कर सकते हो. लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो डेट हैं, तो एक डेट ये हो गई कि 12 मई के पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है. ठीक है, वो ग्रैंडफादरिंग रूल बोलते हैं, वो जैसे चल रहा था आपका वैसे चलेगा. एक तो ये पॉइंट हो गया. 12 मई के बाद में आपने लिया है तो केवल इसी साल में आपको जो भी मिलना है मिल गया, उसके बाद में नहीं मिलेगा. ठीक है, तीसरा है कि जो नया घर भी है उसकी डेफिनेशन को आपको बहुत क्लियरली समझना है कि अगर आपने घर तोड़ के उस पर एक ही घर बनाया तो उस पर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने घर तोड़ के उसमें डुप्लेक्स बनाया तो उसमें मिलेगी, तो उसको हम नया घर मानेंगे. अब ये नए घर की डेफिनेशन है. आप उसमें अपना कॉमन सेंस का जो लॉजिक होता है वो नहीं लगाएगा कि मैंने नया घर बनाया है, तो वो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा, कैपिटल गेन के बारे में थोड़ा उसके बाद में बात करते हैं। एक और हम बात कहना चाहते हैं आपसे SMSF में। हाँ, तो SMSF में अभी जो लॉ पास हुआ है, जो पास हो चुका है लॉ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप SMSF में लेते हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, केवल मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई नहीं करता है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर आपने SMSF में लिया है, SMSF का मतलब है सेल्फ मैनेज सुपर फंड, तो उसमें अब लोन नहीं ले सकते हो आप। पहले हम लोन ले सकते थे, अब लोन नहीं ले सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर्टी तो ले सकते हो लेकिन लोन नहीं ले सकते हो। होपफुली ये क्लियर हो जाए आपको। और SMSF में अगर आपका उसमें नुकसान होता है, चार बातें होती हैं, तो वो आप, क्योंकि ये नेगेटिव गेयरिंग नहीं कहलाती है SMSF में, आप मालूम पड़ा कि आपने 30,000 का अपना कंट्रीब्यूशन डाला है और आपका प्रॉपर्टी में नुकसान होता, तो वो अलग तरीके से ट्रीट होगा। ये जो नेगेटिव गेयरिंग वाली बात करी थी वो केवल इंडिविजुअल के केस में करी थी। आशा कि आपको समझ में आया होगा। आप अगर चाहें तो अपने अकाउंटेंट से भी इसके बारे में बात कर लेना, और आप अपनी भी जो पर्सनल सर्कमस्टांस हैं उसको दिमाग में रखते हुए कई डिसीजन को लेना। ये जेनरिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आशा है कि आपको ये लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है शशि जी,
2: जी
1: थोड़ा मैंने आपका ये थोड़ा बीच में तोड़ा था, क्योंकि
2: नहीं कोई बात नहीं,
1: धंधे की बात भी होना चाहिए,
2: लोगों को आवश्यक है।
1: पैसे का अगर झमेला लगा, ठीक नहीं करा, दर्पण हर चीज़ की सहायता देने की कोशिश करता है,
2: तो होना भी चाहिए,
1: ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम एक और हम अपना संदेश सुनते हैं और फिर हम बात करते हैं आपसे वापस।
3: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
4: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
1: तो सुताओ, मैं प्रदीप जी को भी लेके आ रहा हूँ। प्रदीप जी कैसे हैं? आप भी तो मिथिला के रहने वाले हैं ना?
5: नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मिथिला का रहने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन
1: अरे पड़ोसी हैं भाई, और क्या है, आप तो
5: पड़ोसी हैं। और बड़ी सुंदर मधुर भाषा है। हाँ। और शिष्य जी ने जो बताया इसके बारे में, बड़ा अच्छा लगा, राजा जनक के बारे में, जनक किसे कहते हैं उसके बारे
1: हाँ,
5: में।
1: मुझे भी एक्चुअली ये पहली बार मालूम, मैं समझता था कि उनका नाम जनक है।
5: हाँ, और खास बात यह है कि जब उन्होंने मैथिली में बोला ऋचा जी की प्रशंसा करते हुए, तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो मतलब मिली जुली मुझे लगा कि बंगाली भी है, उड़िया भी है। मैं बंगाल में रह चुका हूँ इसलिए मैं उससे अच्छी तरह से।
1: तभी आप इतने इंटेलिजेंट हैं।
5: धन्यवाद इसके लिए। तो लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है शिशिर जी, ये बड़ा अच्छा अच्छी बातें कर रहे हैं और बड़ा उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व है, बड़ा अच्छा लगा। और शिशिर जी क्योंकि AI में है, तो मैं ये चाहूंगा कि एक और प्रोग्राम है वो AI के बारे में भी आकर बात करें, क्योंकि
2: हमारा सौभाग्य है, मैं हमेशा प्रस्तुत हूँ।
1: शिशिर जी को हाँ बिल्कुल, आप तो AI के ऊपर अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका हो गया
2: जी,
1: और उसमें हम मिथिला को भी थोड़ा सा हम टच करते रहेंगे, ये मैंने सोचा है, थोड़ा थोड़ा मिथिला के ऊपर हम बात करते रहेंगे, जिससे कि जो हमने आज जो आज चेतना में थोड़ी सी आग लगाई है उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें घी डालते रहें बाद में।
5: और हमें बड़ा गर्व है कि जितनी सुंदर तरीके से हमारी ऋचा जी ने,
1: हाँ ऋचा जी ने तो प्रोग्राम में जान ही डाल दिया,
5: बिल्कुल
1: जो एक्चुअली हम सुना रहे हैं जो इन्होंने हमें रिकॉर्ड करके दिए हैं वो तो ऋचा जी की आवाज के आगे कुछ है ही नहीं।
5: मैं बहुत वो बहुत सुंदर एक्चुअली आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ आकर हमसे बात की और अगले प्रोग्राम अभी आने का वादा करते हैं क्योंकि हमें उनकी जो मल्टी टैलेंट है उसका उपयोग करते हैं अपने दर्पण रेडियो
1: जी। धन्यवाद प्रदीप जी।

0: नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल है इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomkare.org.au। धन्यवाद।
1: ये थे हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश। तो शिशिर जी
2: जी,
1: जो एक संस्कृत के ऊपर हम थोड़ी चीज़ की बात करना चाहते हैं और उसमें पेंटिंग का भी फिर आता है, तो चलो पेंटिंग से शुरू कर लेते हैं पहले। इसकी जो पेंटिंग है ना, वो बहुत ही एक यूनिक भी है, उनको UN का एक टैग भी अलग से मिला हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: देखिए, मिथिला पेंटिंग जो है, आपने बहुत ही सही कहा कि इसको UN का टैग मिला हुआ है और इसकी ये बहुत ही अब पिछले कई दशकों में, मुझे लग रहा है 2 दशकों में इसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। था ये भी पहले भी, और इसको पहले, इसको मिथिला में क्या है कि घर घर में हम इसको बनाते थे। धीरे धीरे कालांतर में लोग छोड़ते गए और फिर ये विलुप्त प्राय हो गई, और फिर लोगों ने समझा और इवन सरकार ने भी ये महसूस किया कि ये ऐसी कला है जिसको जीवित रखना बहुत आवश्यक है। तो इसको जानबूझकर और सरकार के प्रयासों से इसको जीवंत किया गया। इसमें कुछ कलाकार जैसे दुलारी देवी, जो पद्म भूषण हैं, थी, उनकी साड़ी आपने देखा होगा पिछली बार वित्त मंत्री जी पहन के आई थी, उन्होंने ये दिया था।
1: अच्छा
2: जी, दुलारी जी द्वारा प्रदत्त तो वो साड़ी थी। तो ये जो मधुबनी चित्रकला है, ये इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है
1: जी।
2: इस कला को घरों की दीवार, आंगन और विवाह कक्षों में बनाई जाती है, लेकिन आजकल अभी है, इसको थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है। इसको लोग कागज पे, कपड़े पे, कैनवास पे और अलग अलग सजावट की वस्तुओं पर बनाई जाती है। इसके अलग अलग शैलियाँ हैं, आप इन शैलियों में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाएगा। लेकिन मिथिला में और दूसरे प्रकार के भी कलाएं हैं, जिसको हम बोलते हैं अरिपन कला। सिक्की घास से लोग ये बनाते हैं, रखने की चीज़ें बनाते हैं, जिसको सिक्की घास की कला बोलते हैं। एक कला है जिसका नाम है सुजनी कढ़ाई। तो पहले क्या होता था कि पुराने कपड़ों को लगा करके लोग एक छोटा सा एक ये बनाते थे, बैठने के लिए जगह बनाते थे, बैठने का बनाते थे, उसको सुजनी बोलते थे, और वो बाद में चल के उस सुजनी कला ही बन गई।
1: अच्छा
2: जी। इसके अलावा लोग मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, लोक मुखौटे बांस की लकड़ियों से भी काफ़ी कुछ मिथिला स्पेसिफिक चीज़ें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो,
1: तो ये अगर मैं बात करूं कि जो ये पेंटिंग वगैरह हैं, वो आपकी पूरी जो संस्कृति है, जो आपका इतिहास है, वो भी दर्शाता होगा।
2: हाँ, तो
1: जो आपके राजा रहे हैं उन सब का होता है। क्या मिथिला में ऐसा क्या फ़र्क है, ये मेरा शायद प्रश्न है।
2: तो मधुबनी कला में देखिए कि क्या है कि हमारा जो मेन क्या है, राम भगवान अयोध्या से आए और उन्होंने सीता जी से विवाह किया। तो उसमें जो वो रामायण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, कलाकृतियाँ मिलेंगी।
1: अच्छा अच्छा।
2: उसमें हनुमान जी भी मिलेंगे, राम भगवान की, और मुख्य प्रकार से राम और सीता के विवाह के ऊपर में बहुत सारी कलाकृतियाँ
1: अच्छा,
2: मिलेंगी।
1: अच्छा अच्छा, वो है एक
2: जी।
1: अच्छा,
2: और उसमें फिर अब तो धीरे धीरे से, मैं यहाँ पर सिडनी में एक व्यक्ति को जानता हूँ, एक हमारे मित्र हैं, उनको जानता हूँ, जिन्होंने इवन सिडनी और इनका जो भी अपना सिडनी का जो ब्रिज है उसके ऊपर भी, उसको भी मिथिला कलाकृति का आकार दिया है।
1: हार्बर ब्रिज की आप बात,
2: हार्बर ब्रिज की, जी हार्बर ब्रिज की बात कर रहा हूँ। और वो जो अपना एक,
1: तो यहाँ पर सिडनी में है,
2: सिडनी में।
1: अच्छा।
2: और भारत में भी मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं मात्र इस कला के माध्यम से। और अच्छा। जो लोग मुख्य रूप से उनका शोषण करते हैं, उनकी कलाओं को ले लेते हैं और उसे या तो अपने नाम पे चलाते हैं या फिर उसी कला को बहुत अधिक मूल्य में बेचते हैं।
1: तो मैं इसको शोषण तो नहीं कहूँगा। देखिए एक मैं बात बोलूँगा
2: जी जी,
1: जो वो व्यक्ति जो मान लो कहीं पे मान लो दरभंगा में कोई एक गांव में कोई बना रहा है
2: जी,
1: उसको वहाँ पे समझो वो 100 रुपये में बेच रहा है
2: हाँ।
1: और किसी ने 100 रुपये में लिए
2: जी,
1: तो उसमें कोई शोषण नहीं हुआ। अगर मैं आके उसको $100 में बेचता हूँ
2: अब उसको व्यापार कह सकते हैं। लेकिन मैं मेरा ये मानना है कि यदि उस व्यक्ति को उसकी पहचान ना दी जाए कि ये व्यक्ति
1: वो अलग बात आ गई, वो चोरी करना एक अलग बात हो गई कि आपने किसी की
2: तो वहाँ पर इसीलिए मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ बिहार में जिनको कोई नहीं जानता लेकिन वो बहुत ही अच्छा कलाकृति बनाते हैं बहुत। और मैंने मेरा एक प्रण ये भी है कि अभी आने वाले कुछ महीनों में एक बहुत ही बड़ा हम एक उसके कुछ प्रदर्शनी
1: करेंगे
2: और बिहार के जो
1: आप हमें बताइए हम दर्पण रेडियो के हमारे जो भी श्रोता हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और खरीदेंगे उसको।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार के जो एकदम ग्रास रूट लेवल के जो कलाकार हैं उन सबके कला को हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे
1: जी।
2: और हमारी ये इच्छा है कि उन सबको उनका सम्मान मिले, उन सबको जो उनका जो उनको अभी तक नहीं मिल पाया है, लोग नहीं जानते हैं और वो ऐसे कला को बनाते हैं, उन सबको उनका सम्मान मिले। क्योंकि
1: एक तो ये बात है लेकिन मैं तो कहूँगा एक मेरा एक पहलू है इसके बारे में, वो ये कि जितनी ज़्यादा हर घर में जाए पेंटिंग
2: हाँ हाँ बिल्कुल
1: इतनी अफोर्डेबल हो, हर आदमी
2: अफोर्डेबल होना
1: चोरी भी करे सारा फोटोकॉपी करे कोई फर्क, लेकिन जाने एक बार को उसकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो फिर उसकी वैल्यू चार बातें आना शुरू हो जाती है ऐसे मैं सोच रहा हूँ।
2: हाँ
1: इस नंबर गेम
2: ये इसको थोड़ा सा इस तरह भी देख सकते हैं कि ये इस चीज़ को अगर यदि हम बिजनेस का फॉर्म समझते हैं
1: हाँ।
2: तो ये केवल कुछ लोगों के हाथ में ही सेंटर्ड है, ये कुछ लोग ही इसको चला रहे हैं और वो इतनी वैल्यू पर बेचते हैं जिसका मतलब लोग एफर्ड नहीं कर सकते बेसिकली।
1: एग्जैक्टली exactly. अब जैसे कि समझो कि मैं अपने बिजनेस से हमारे जो हम हर साल कुछ ऐसे देते हैं, अब अगर आप चाहिए तो जैसे आपने जब आपसे बात कर रहा हूँ सोच भी रहा था कि समझो कि आपने हमें समझो हमने आपसे 100 पेंटिंग ली वो हमें हम अपने जो क्लाइंट को देते हैं, तो अगर वो अफोर्डेबल होंगी तो मैं दे पाऊंगा वरना नहीं दे पाऊंगा।
2: एग्जैक्टली वही बात है।
1: अगर आप कहेंगे भाई ये $100 के तो फिर कहाँ से होगा,
2: नहीं हो पाएगा।
1: तो अगर आप चलिए अभी हम बिजनेस डील भी कर लेते हैं आप हमें जो है ना 100 पेंटिंग दीजिए हम अपने क्लाइंट को देते
2: हैं हाँ,
1: तो इस तरीके तो एक इस तरीके से। अच्छा शशि जी अगर आप इजाजत दें तो एक मैं मैसेज पढ़ना चाहूँगा।
2: अवश्य अवश्य।
1: तो जो हमारे सुशील जी लिखते हैं बहुत अच्छा रेडियो प्रोग्राम चल रहा है। लीला जी लिखती हैं लीला जी हमारी बहुत डेडिकेटेड कंट्रीब्यूटर भी हैं लिसनर भी हैं। मैं श्री कृष्ण पर एक आइटम 22 भाषाओं में गाती हूँ जो विभिन्न धुनों पर आधारित है, उसमें मैथिली भाषा में भी एक गीत है मैथिली भाषा कन्हैया तोहर बसी सबक मन मोहे सबक मन बोहे सबक मन बोहे कन्हैया तोहर बसी पे मोती मूंगा सोहे मोती के झिलमिल सबक मन बोहे। मेरा यह आइटम स्कूलों कवि सम्मेलनों में बहुत लोकप्रिय हुआ है। अरे क्या बात है लीला जी, तो बहुत मल्टी डायमेंशनल है भाई। हमारे प्रदीप उपाध्याय जी कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में यतीन जी द्वारा दी गई जानकारी सभी श्रोताओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, लेकिन टैक्स के नियमों को यदम व्यवहारिकता के संदर्भ में देखा जाए तो कुल मिलाकर यही संदेश कि एक घर भगवान ने दिया हुआ है उसमें आप खुश रहिए जो प्राप्त है आप प्रदीप जी क्यों हमारे अकाउंटेंट के बिजनेस को बंद करना चाहते हैं? अगर सब लोग उस चले गए आपकी भाषा में खुश रहिए पर्याप्त है जो है तो फिर अकाउंटेंटों की क्या ज़रूरत पड़ेगी। प्रदीप जी राजीव निगम जी कहते हैं हैप्पी टू लिसन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन मिथिला इंक्लूडिंग सॉन्ग फ्रॉम ऋचा जी। ऋचा जी फिर से लिखती हैं प्रदीप जी यतीन जी शिशिर जी मुझे अवसर देने के लिए साभार धन्यवाद। मेरी दिली इच्छा है कि दर्पण रेडियो के माध्यम से एक लोकप्रिय एक लोकगीत पर कार्यक्रम हो जिसमें सभी प्रांतों के लोग बहुत अच्छी बहुत है, आपकी सलाह है, लोकगीत का बहुत बड़ी बात है और वो आपको छू जाते हैं अगर आप थोड़ा सा। बॉलीवुड ने क्या कर दिया कि हमारी हमारी सारी विंडो बंद कर दी, केवल एक ही रह गई है।
2: बिल्कुल
1: ऋचा जी, आप कह रही हैं कि क्या सुंदर गीत है पहुनवा और राघव। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये। ऋचा जी कहते हैं मिथिला भाषा की मिठास का कोई बात ही निराली है। ऋचा जी फिर लिखती हैं कि ये अति सुंदर विचार है। तो ऋचा जी भी आपके विचार से सहमत हैं ऋचा जी। तो लोकगीत के ऊपर हम एक प्रोग्राम करते हैं। नितिन जी लिख रहे हैं, नितिन जी हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी जानकारी पूर्ण पेश किया, जिससे मैथिली भाषा पर बहुत ही नई जानकारी मिली। विद्यास्पति बाल विवाह संस्कृत से मालूमात हुई और गाने की बहुत ही कर मधुर हैं। हमारे चेतन साजी लिखते हैं, लिसनिंग टू योर प्रोग्राम फ्रॉम मुंबई। अरे मुंबई में है, बड़ी गर्मी चल रही होगी वहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं कि हम अपने एक प्रवीण जी को भी फ़ोन करते हैं और देखें वो प्रवीण जी क्या कहते हैं। प्रवीण जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू,
1: बताइए।
3: नाइस टू बी हियर, थैंक यू।
1: आप बताइए हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं।
3: ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपनी अपनी भाषा को सुन के और हर एक जो विचार है और आपका भी जो प्रेजेंटेशन इज फैंटास्टिक। सिंधी में से बैठ के सुनना, यू शुड ब्लेस, यू आर सो ब्लेस्ड टू सी दिस।
1: चलिए,
3: टू हैव दिस, वी हैव टू प्रमोट दिस मोर, ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा।
1: जी,
3: आपने पहले बात करी रिगार्डिंग द बजट।
1: जी,
3: उसपे हाँ, उस समय इसमें काफी अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन है मार्केट को।
1: जी,
3: क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या कोशिश कर रही है, उनकी इंटेंशन क्या है। देखो प्रॉब्लम ये भी है कि हो सकती है जैसे उन्होंने बजट सोचा था ऐसे पास ना हो इन द एंड, तो थोड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में। उसको प्लीज आप एलाबोरेट कर पाएंगे, देयर विल बी ग्रेट।
1: जी, तो प्रवीण जी, एक तो बात आपने बोला इंटेंशन क्या है। इंटेंशन बहुत सिंपल है कि जो अमीर हैं उनसे लिया जाए और फिर सेंट्रल लिंक के थ्रू लोगों को दिया जाए। एक तो ये है इंटेंशन। दूसरा इंटेंशन ये है कि लोग नई प्रॉपर्टी खरीदें, और अगर कोई बना रहा है तो एक के बजाय दो घर बनाएं। ये उनका जो मैं सिंपल वे में बोल रहा हूँ कि पुरानी प्रॉपर्टी पे उन्होंने इंसेंटिव ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब आपको अगर नेगेटिव गेयरिंग का फ़ायदा उठाना है तो नई प्रॉपर्टी बनाओ, ठीक है, नई नई प्रॉपर्टी लो। अगर आप बनाते हो तो आपने अगर घर तोड़ा तो एक की बजाय अगर दो बनाओगे तो आपको नेगेटिव बेयरिंग मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। ये इसका मूल उनका उद्देश्य है कि घर की नंबर तो सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब हाँ, अब इसके जो जो लॉ है, जो इसका लॉ भी पास हो चुका है नेगेटिव गेयरिंग के ऊपर, और अब जो कैपिटल गेन वगैरह का है उसके हम बाद में थोड़ी देर में बात करते हैं, क्योंकि अभी समय हमारा थोड़ा सा वो हो रहा है और हमें कई बातें करनी है मिथिला के ऊपर। लेकिन जो आप तो अकाउंटेंट हैं, खुद ही आप इतने अच्छे अकाउंटेंट हैं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो लोग आज की डेट में वेल्थ क्रिएट करना चाहें, मैं सीधी एक आपसे बात करना चाहता हूं, तो आप SMS को अब शायद इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये मेरा एक पॉइंट ज़रूर होगा। आप अपने अकाउंटेंट से बात करिए कि ये SMS अब क्या बला है और कैसे हम वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं। जो नेगेटिव गेयरिंग भी होती है वो वेल्थ क्रिएशन का एक माध्यम होता है, उस पर उन्होंने थोड़ा सा रोक डाल दिया। लेकिन अगर आप SMS को समझते हैं उसके थ्रू आप कई चीज़ें कर सकते हैं। ये मेरा एक संदेश है मेरी तरफ से। आप कुछ कहना चाहते हैं प्रवीण जी?
3: बिल्कुल ठीक कहा। एक ही बात हो गई है, जो जो मार्केट में चेंज आ रहा है
1: क्या है कि SMSF का एक तरीका होता है, you can have six member, आप मिलके कर सकते हो कई चीज़ों को। एक SMSF की कई स्ट्रेटजी होती हैं, और अगर आप समझते हैं कैन यूज दोज स्ट्रेटजी एंड यू कैन क्रिएट द वेल्थ। ये ऐसे मान आप अपने अकाउंटेंट से पूछें, अकाउंटेंट आपका अच्छा जवाब देगा। अगर आपको हमसे बात करनी है आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं दर्पण रेडियो पे 0421-590-791। प्रवीण जी आज आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोग्राम में और भी अगर हम कुछ सुधार कर सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो शिष्य जी ये थोड़ा टैक्स वाला मामला आ गया, ये मिक्स हो नहीं रहा है, जो हम इतनी भावनात्मक और चार बातें कर रहे हैं वो कहाँ ये दुनियादारी के बाद में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा लेकिन हम एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और

0: बताओ ये गैस करना है आपको कि किसने गाना गाया था।
1: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
2: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
0: तो शशि जी, समय मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि यहाँ पर लोकल एक्टिविटी क्या हो रही है। मैं सोचा था कि काफ़ी कुछ हम कवर कर लेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ मैं तो सोचता सारे कवर कर लेंगे लेकिन नहीं हो पाया। तो हम ऐसे कर लेते, पहले तो हम यहाँ पे क्या क्या आप कर रहे हो जिससे कि लोग आपसे जुड़ें, और मैथिली भाषा को जो लोग सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कैसे करें? आपकी एक्टिविटी क्या है, आपकी संस्था क्या, कोई वेबसाइट है, ईमेल क्या है, वो आप प्लीज़ हमें बता दीजिए।
3: एकदम एकदम। तो यहाँ पर हमारी पहचान है मिथिला कल्चरल सोसाइटी .au, एक हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्रेजेंस है जिसको बोल लेते हैं, होम पेज है
0: जी।
3: तो मिथिला कल्चरल सोसाइटी .au इस पर जाएं और यहाँ पर हम हमारे संस्था से संबंधित आपको सारी जानकारियाँ मिलेगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किस प्रकार का, किस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अभी आने वाला, मतलब पिछले साल हमने मिथिला महोत्सव किया जिसको बहुत ही प्रसिद्धि मिली और बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसके ऊपर में अपने कमेंट्स दिए, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक था। और इस साल हम उस चीज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर रहे हैं, मिथिला महोत्सव 2026, जहाँ पर
0: कब है वो?
3: ये अक्टूबर 17 से लेकर 17 अक्टूबर 19 तक है।
0: अरे वाह
3: जी, 3 दिनों का प्रोग्राम है।
0: क्या बात है
3: जी। और 3 दिनों में हम यहाँ पर दुर्गा पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि हम शाक्त हैं। मिथिला के जो संतति हैं, मिथिला के जो लोग हैं, उनको शाक्त बोला जाता है, क्योंकि
0: शाक्त,
3: शक्ति के जो उपासक होते हैं उनको शाक्त बोला
0: जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ।
3: तो क्योंकि माता जानकी के हम संतान हैं और माता जानकी शक्ति स्वरूपा हैं।
0: अच्छा।
3: तो हम शाक्त हैं और इसीलिए दुर्गा माता का, काली माता का हमारे सभ्यता में, हमारे संस्कृति में बहुत ही महान स्थान है। और उसी परंपरा में हम दुर्गा पूजा का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं।
0: अच्छा।
3: जो मिथिल, जो पूरी तरह से मिथिला और मैथिली को समर्पित है।
0: अच्छा।
3: और उसमें एक सेगमेंट हम 3 घंटे का देंगे, जो पूरी तरह से, जिसका शीर्षक होगा मिथिला महोत्सव 2026, जिसमें मिथिला से संबंधित गायन, नृत्य, आर्ट, कला, संस्कृति, कोई लिखना चाहता है, कोई बोलना चाहता है, इस हर चीज़ होगी। और ये 3 घंटा, वैसे तो तीनों दिन पूरा डेडिकेटेड होगा मैथिली के ऊपर में, लेकिन ये 3 घंटा हम लोग साथ आएंगे, बातें करेंगे लोग।
0: कहाँ पे है ये?
3: ये क्वेकर्स हिल कम्युनिटी सेंटर में है।
0: अच्छा।
3: 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर।
0: अच्छा।
3: और बहुत ही सबको समझने का,
0: अगर उसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई जो मिथिला में जो गाना करना, हाँ, चाहे, आपका कुछ ड्रामा वगैरह भी होगा?
3: हाँ,
0: उसमें
3: हम इसमें दो स्किट भी रहेंगे, और बेस्ड ऑन जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं हम और स्किट की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे सामने 2 स्किट तो क्लियर हैं। 4 डांस परफॉर्मेंस हैं, कुछ गायन की कला भी लोग करेंगे, कुछ कला
0: आपके, कुछ आपकी पेंटिंग वगैरह भी हैं, कुछ लोग खरीद भी सकते हैं।
3: जी जी, कला भी होगी, संस्कृति भी होगी। हम बिहार से जो ग्रास रूट के लेवल के लोग हैं, हम उनको, वो भी हमारे संपर्क में हैं, हम उनको भी लेकर के आएंगे। और यहाँ जो हमारे डिग्निटरीज हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हाँ, ऊँचे ऊँचे पदों पर, या कम्युनिटी लीडर हैं,
0: हाँ जी,
3: हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएंगे। और मल्टी कल्चरल ऑस्ट्रेलिया का
0: को, तो वहाँ पे जी, जो मैथिली की कुछ ड्रेसेस भी होती है, लाइक कपड़े,
3: हाँ,
0: जैसे,
3: हाँ, हाँ, मिथिली कपड़े का अब देखेंगे, धोती कुर्ता तो सभी पहनते हैं, लेकिन मिथिला का पाग और दुपट्टा, ये ये पहचान है।
0: तो वहाँ पे मिलेगा खरीदने?
3: हाँ हाँ बिल्कुल, पाग और दुपट्टा का भी व्यवस्था।
0: आप ये देखिएगा कि जो वहाँ पे रोप मैथिली में पूरा रंग जाए
3: एकदम। हमारा यही प्रयास है कि आने वाला जो समय है वो
0: ड्रेसेस मंगाइए सब लोग, मैं सबसे पहले खरीदने वाला हूँ।
3: बिल्कुल, मैं पूरी तरह
0: तो वही पहन के मैं आऊँगा,
3: कटिबद्ध हूँ इस चीज़ को उस ऊंचाइयों पर ले जाने के, हाँ, लिए मिथिला मैथिली और मिथिलाक्षर को अपनी पहचान मिले।
0: हाँ।
3: दुर्गा पूजा में आप सभी जुड़ें, आए 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी का दिन रहेगा शायद, या सप्तमी, अष्टमी, नवमी का दिन रहेगा। तो हमारी दुर्गा माता का आगमन हो रहा है, वो रास्ते में है और बहुत शीघ्र सिडनी में उनका पदार्पण होने वाला है। आप लोग आए, जुड़े और दिल खोल कर अपना
0: एक बार अपना नंबर दोबारा से दे दीजिए।
3: जी, मेरा नंबर है 0426-399-461 और वेबसाइट का नाम है mithilacultural society.au। कृपा करके हमसे जुड़े।
0: जी, तो श्रोताओं, प्रोग्राम समाप्त होने वाला है। आप दो तीन ही मिनट, दो मिनट रह गए हैं। जल्दी से मैं जो और भी लोगों के आए हैं संदेश में ऊपर देता हूँ। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं चेतन शादी की, FCNR में डाली 6% मिलेगा आपको, वो 6% हमें चाहिए 16%। चेतन जी क्या करें। तो प्रकाश, वो आप जो लोग हैं उसमें आप देख लीजिएगा अभी हमें।

0: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
1: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम. हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से. अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में. ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au.
2: तो श्रोताओं हमें
1: feedback@dapanradio.org.au.
2: तो श्रोताओं हमें मुझे ये